पार पार फंद थ जोत की टक्के भेकी बारम बलाई सहजे नो सब लोच दी तन गुर पाहिया ना जाए पार पार पंडित जोत की टक्के बैखी बरम बुलाए गुर बेते सहज पाहिया।

जे उपजे हर पहिया सच्चा सोए रहाओ सहजे गाविया ताहे पवे पन सहजे खठनी बाड सहजे ही भगत उपजे सहज प्यार बेराग सहजे ही ते सुख साथ होए बिन सहजे जीवन पाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाद लगाए सहजे ही गुण ऊचरे भगत करे लिवलाए शब्दे ही हार मन वसे रसना हार रसकाए सहजे काल विदारिया सच सर नाही पाए सहजे हर नाम मन वसिया सची कार कमाए से वड भागी जिनी पाहिया सहजे रहे समाए माहिया विच सहज न उपजे माहिया दूजे पाए मनमुख खरम खमावने हो में झल्ले जलाए जन्म मरण ना चुखी फिर आवे जाए त्रयोग ना विच सहज न पाहिया त्रे गुण परम बुलाए पारिया गुनिया खिखिया कटिया जा मंद हो गुट गुठा जाए छोटे पद में सहज है गुरमुख पल्ले पाए निर्गुण नाम निदान है सहजे जो सोची होए गुणवंती सलाहिया सचे साची सोए बोलिया सहज मिलासी शब्द मिलावा होए बिन सहजे सब अंध है माहिया मोह गुबार सहजे ही सोजी पाए सच्चे शब्द अपार आपे बकम मिलायन पूरे गुर करतार बकश मिलायन पूरे गुर करतार सहजे अड सत पछानिया निर्भो ज्योत निरंकार सबना जिया का एक डाटा ज्योति ज्योत मिलाव नहार पूरे शब्द सलाहिया जिसदा अंत न परवार ज्ञानिया था धन नाम है सहज करे व्यापार अन

तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पर पाया काहु नानक करते किया पाता सो खिच करना सो कर रहिया सो दाराग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर परसा सो दर तेरा के हा सो कर के हा चित्त वै सर्व समाल।

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी कुर कुर हाई, कहन जाए तेरी तो वडियाई। सब सत सब थप संग चंगियाया, सीतापुर का किया वडियाया, तुद विन सिती किने न पाया,

दुख सुखियो विसरे मेरी माए सचा साहेब सचनाए रहा सचे नाम की थो वडियाई आख थके कीमत नहीं पाए जे सब मिलके अखन पाए।

जिन सेविया जिन सेविया मेर हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक

आप विछोड़िया आप मिलाया, तू तरियो सब तुझ ही माए, तुद बिन तू जकोए नाए, जी अचन सब तेरा कै, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मिल, जिसनों तू जानाए सोए जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेविया चिन सुख पाया, सहज ही हर नाम समाया, तू आपे करता।

तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। फतेह एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह, फतेह दसवी कभियो पाच बेंती चौपाई, हमारी करो हाथ तेरा चा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तव चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमारे दुष्ट

आप हाथ ते मुझे उबरिया मलन काल का त्रास निवरिया हो जो सदा हमारे पच्चा सिरियस दूध चू खरी और अच्छा राख ले ओ मोय राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर दसकंता काल पाए ब्रह्मा पपतारा काल पाए शिव चू अवतारा काल पाए कर प्रसन्न प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा

यवन का सब जगत बनायो देव चचन उपचायो आद अंत एके अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी शिव कुन को शिव कुन सकतीयो

के अंतर की जानत वाले बुरे की पीर पहचानत चित्ती के कुंचल असतुल्ला सब पर कृपा दृष्ट कर फुल्ला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए सधन के सुखी एक एक की पीर पहचान कट कट के फट फट की जान।

तनह बिल आप आपने भूत है चेती भरत भिन्न भिन्न तो इतेती तुम्हारा लका न चाय पसारा खेबद सचा प्रतन संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो रव का ही पुप्पा अंत चेरत से तचकीनी उत्पुज खान बहु रचतीनी काहू फुल रझावे बेटा काहू सिमत पयो संक इकेठा सगरी सृष्टि काय अचंबा आद जुकात स्वरूप स्यंबा आवरचा मेरी तुम करो सिक उबार असिक संघरो दुष्ट चिते उत्वत उत्पाता सकल मलेच करो रन काता जे अस तुज थव सरनी परे तिनके दुष्ट तुकत हवे मरे पुरक चवन पग परे तिहारे तिनके तुम संगत सब तारे जो कल को एक बार दिया है ताके कल निकत न आ रचा हुए तरे सब का सब काला दुष्ट अरिष्ट

चौपाई संबत शस्त्र सहस बनिचय अरत सस पुन थिन कहिचय भव द्रव सुति अष्टमी रविवार थिर सत्रव ग्रंथ सुधार सवय पाए कहे जप थे तुमरे तब थे कहो अंक थरे नाही अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मनियो सिमरत शस्त्र भेद सब वो भेद कह हम एक न जानियो श्री अस्त पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो ही पकानियो दोहरा